0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है। और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं। और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं। आप हैं जिम्स वसंत कुंज, दिल्ली के डायरेक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर। उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है।
0: जी,
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि, और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है।
0: जी,
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वॉज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता, और ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शंस एक कंपनीज में मिली, तो मगर मेरा क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया। और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: उसमें एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो जी, बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं,
0: गिरते हैं
1: के चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर। जी जी जी,
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के,
0: हाँ,
1: वो बेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात।
1: तो जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं तो आप गुरु अपनी जो चेतन
0: ऊर्जा
1: है,
0: हाँ,
1: उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर रहे
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है सुगम करते
0: हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, और इसके बारे में विस्तार ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा। लेकिन मैं इशारा कर देता हूं अपने लिसनर्स को कि कहते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क तक लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अभी आपने हमें बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। लेकिन सर, आज का जो समय है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो खत्म हो गई और घुटना स्पर्श हो गया है। इस बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना सही है कितना गलत है और अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल रहे हैं। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक विद्वान एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी, जो कि जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में डायरेक्टर हैं और 38 साल का अनुभव है। इस विषय पर जरूर जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है, लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी,
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यावहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यावहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है, वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी,
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म है उसको हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है। मगर जब हम इनकी, इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं, मने मग न चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। सो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
0: प्रकाशमान
1: शक्ति से जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं।
0: जी।
1: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में,
0: जी,
1: ये एम्बेडेड है,
0: विद्यमान है।
1: यही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे,
0: जी,
1: तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है। और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है,
0: नहीं।
1: ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे।
0: बहुत अच्छा।
1: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे
0: जी।
1: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
0: वो सबके एक है जी,
1: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके हैं,
0: सब कुछ भूल चुके हैं, सब
1: पता
0: कुछ
1: कि हमारे वेदों में क्या कुछ नहीं है। हमारे वेद जो है उनमें इतना ज्ञान है, मगर आप किसी से भी पूछिए, न वेद का पता है, न उपनिषद का पता है, इवन भागवतम का किसी को नहीं पता है। भागवतम में क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान की सरिता उसमें बह रही है
0: जी,
1: उससे भी वंचित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लिप सर्विस कर रहे हैं, हम कर्म कांड में रिचुअल में फंस गए हैं। और भागवतम इज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिज्म, हम उसी को धर्म समझ बैठे हैं।
0: ठीक है,
1: ये हमारी अवस्था, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो है वो अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दी। उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया, ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: तो और संस्कृत हमने छोड़ दी, तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलॉसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
0: दार्शनिक।
1: दर्शन का अर्थ होता है देखना,
0: देखना
1: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से, अंदर जो चैतन्य शक्ति से, चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
0: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
1: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति गिर गई।
0: जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया और उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो। स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है? वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है। लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुछ दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, चूंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती है, उनसे उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर, जैसे भी आपकी संस्कृति है, उसके अनुसार जो अंदर वास करता है उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में।
0: जी,
1: तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। जो इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं पहले स्वराट फिर सम्राट, जो स्वराट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक कायाकल्प आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह। ये
0: जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा आई एम द लिमिटलेस सेल्फ, तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है। शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अड्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदास है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जंबो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे, फिर आप संसार में कर्म कीजिए
0: जी, जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है, एफर्टलेस एक्शन होना चाहिए।
0: सो लिसनर्स, कहने का एक आशय यही है, अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूँगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं, और अगर इस तरीके से इंसान अपने जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है, फोनिक हमारी बातें हो रही है, आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है। और हमारे इसमें संस्कार मिल जाएं, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर मैं इस बात को यूं कहूं कि, या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था। वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है। इस युग हम प्रोदेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हाँ, साधु बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का। क्योंकि बीच में जब, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था। उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा।

0: इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है
1: जी।
0: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ,
1: मंत्र
0: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल,
2: वायु,
0: अग्नि, वायु और आकाश। ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। ये सिंबल्स हैं। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
1: जी,
0: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड, और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस। ये तीन स्टेट्स हैं मैटर की, और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा, आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी, सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है, हमें समझने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
1: जी,
0: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा, सीक्रेट, जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
0: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है। हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है, ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी,
1: और सारे काम हो जाएंगे,
0: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बहुत बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
1: क्या बात?
0: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
1: क्या बात?
0: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
1: जी। जी,
0: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो न मोशन में होता है न रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
1: जी। जी,
0: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया, वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
0: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो।

0: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसनर्स मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था, विश्वगुरु, विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं, और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर, कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें समय दिया, फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। सो लिसनर्स बताएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए, क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें, बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा 120 नंबर हो जाता है 4060205, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं और मुलाकात का जो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है, कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी के आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच, आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहां से कंप्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की, बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर। मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में। और हम जब बाहर में रहती है, जब माय पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है।
0: इंडिया का सीरियल,
1: हाँ, इंडिया का सीरियल, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी, हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है। हाँ, बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ, नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा, बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ, इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिवीजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था। वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: बहुत खूबसूरत
1: इंसिडेंट हुआ। और उतने माधवी मैम में बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही है कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा, समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था, क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा
0: हेल्प
1: योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं सब सेम होती है, इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में मेरी ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, आप एलुमनाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे? शहजादी बेबी हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्सेंट मार नहीं रहे थे, जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: हाँ, मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर सिबलिंग जी ने।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी हूँ।
1: अरे मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात पर आओ।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लूँ।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: हाँ इसमें उस टाइम में मेरे जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
0: का वाक्य
2: एक बांग्लादेश का था,
0: बांग्लादेश का।
2: हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था। तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है डॉक्टर का, अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में तो नर्स क्यों नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए प्लीज।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इस तीनों को बताया, उसको बोला हम लोग ये करना चाहते हैं।
0: उसने बोला दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी,
2: उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे कैसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम इतना उतना प्लेस नहीं दिया, उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करने है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज, तो उसने मैंने क्या किया, मैं मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया। तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात है, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल।
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है
0: तो
2: इसको दिखानी है तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया उसको सिखाया फ्री में. हमारा जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेती है, सिर्फ दुआई लेती है.
0: बहुत खूबसूरत.
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं. तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम. अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है. तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया. नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं. जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी. मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे. तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है, तो उसने बोला 1,000 लगती है. तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में. तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा. उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है.
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी
2: हुई. तो उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया. उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला. फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया. एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया. हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है. हाँ, एक अच्छा सोसाइटी है.
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए. आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें. आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा.
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे. लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ.
0: हाँ?
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं. पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना.
0: बादो तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो. खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी. कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपको अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ के पास आउट हैं. खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं. खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती. खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं. तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में, जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब

0: करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले, मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था, तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद, कोविड का पेशेंट को सीपीआर देना मना है, क्योंकि सीपीआर देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेफ करनी है। तो मैंने बोला वो सब, तो डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोती है ना, वो मेरे दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
1: आए हाय माशाल्लाह।
0: तो
1: आइए, तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है, देखो किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन।
2: हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक सीपीआर दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
0: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा, उसने मेरे को एक ही चीज था कि वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
1: Oh my God.
0: तो और उसको बीबी भी 17 का है, हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर सीपीआर 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया, उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रहा। मैंने बोला मैं सीपीआर का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं सीपीआर का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में देखती हूँ, कोई दिक्कत में देखती हूँ, अगर उसको कुछ कर सकती हूँ, उसको हंसी दे सकती हूँ, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
2: रियली। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखिएगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
0: हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत जो बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है। तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर, हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ, उसको सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया।

0: में करा, अपने देश
1: हमारे
0: में करा,
1: देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्ची होती है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी, मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और किसी कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, when I die people should have a smile on their face that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे, शाबाश शाबाश मेरे लाल, लगे रहो।
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
0: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ।
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा, तुम
1: प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी, मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
1: रहे। एक मैं बात बताऊं, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है, तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यू ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
0: ठीक है ठीक है, हम बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा, आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा, मेरी जो निकल पड़ी, मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो गगन, बांग्लादेश जाऊंगा, मैं नीदरलैंड जाऊंगा, मैडम जहां जहां जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहां एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
0: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सबने पसंद किया, दिल से एक बार फिर शहजादी आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
1: हाँ, ये तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था और तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में, इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी, तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसे से मेडिटेशन सीखा है। देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है, लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर, लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव ए डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक ए लायन, I feel like there was a lion to come and save me. So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
0: Thank you so much Shahzadi, और शुक्रिया आपके लिए माधवी, बहुत अच्छी बात आपके फेवर में सुनने को समझने को मिल रही है। बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रही हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुछ और कहना चाहती हैं माधवी आप?
3: सर हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारे जो मेन, जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता जाता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस ऑल आर वर्किंग एज अ टीम. तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं अभी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम. सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं. एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई दे आर डूइंग. आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्क इन कंट्री लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे. दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं वी वॉन्ट टू सर्व दिस कंट्री बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे और अब इस कंट्री को जरूरत है. वहां के इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है.
0: क्या बात है माजी, वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते. सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया. और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है. शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें कि दुआएं हर किसी को चाहिए और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं. किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई.
3: सर हमें बहुत धन्यवाद.
1: We also become happy to talk to you.
0: Thank you, Shahzadi. So, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा. सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मगर छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपके अपने चहेते सिहतिया भैया और टीकन भाभी जी हमारे स्टूडियो में साथ में हैं, आपसे बातचीत करेंगी और आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगी। तो सबसे पहले टीकन भाभी और सिहतिया भैया, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: भाई कपूर साहब, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आदाब, नमस्कार। एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे और टीकन देवी को न बुलाते तो भी हम चले आते, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा कार्यक्रम है और हमारे श्रोताओं के साथ हमें साझा करना है कि हमारे पास क्या खास बात है। चलिए बात पर आता हूं। अभी हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, एक सेमिनार अटेंड करके वहां चर्चा हुई इसी मुद्दे पर और चर्चा थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। अरे टीकन, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर?
2: आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो विषय है वो बेहद जानकारी की जरूरत हर उस आम नागरिक को है जिसके बारे में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, खासकर 6 महीने में। उसके लिए जो आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना जरूरी हो जाता है कि भारत में शिशु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। SRC बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24 प्रति 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब ये है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म मना नहीं पाते और ये 2023 से 1% कम हुआ है।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मृत्यु दर का आखिर कारण क्या है।
1: देखिए कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर साहब, नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं और उनके मुख्य कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं। कपूर साहब, आपको कुछ कहने से पहले या टीकन को मैं सुनने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इस आंकड़े को पढ़ रहा था, सोचिए कि मैं परेशान हो गया। अगर वही बच्चा जब दुनिया में जन्म लेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो देश का एक नाम रोशन कर सकता था। क्यों टीकन, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, माँ और बच्चे दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: बिल्कुल, तो सिहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या यूं कहे सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
1: भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम यानी कि खास होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी बिल्कुल, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है।

0: है या नहीं चल रही ये देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है।
1: भाई टीकन, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया, समझाया। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कपूर साहब इस बात पर गौर फरमाएगा कि कई लोगों को जानकारी होती नहीं है और उस पीले गाढ़े दूध को वो बच्चों को कहीं कहीं पिलाती नहीं है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स कहते हैं कि वही पीला गाढ़ा दूध जिसको कहा अभी टीकन ने, कोलेस्ट्रॉल बहुत लाभदायक होता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल है, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
2: बिल्कुल। तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: तो साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आज एक हम खास विषय पर बात कर रहे हैं और आज हमारी अपनी जानी पहचानी आप सब भी जानते हैं टीकन देवी और सिहतिया भैया दोनों ही हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सिहतिया भैया अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी हैं शशि कपूर साहब। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं भाई।
2: बिल्कुल, भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय सबसे महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: मैं इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी सिहतिया भैया आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: भाई मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: अच्छा टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल आरजी बाबू, बच्चा भले ही बोल नहीं सकता लेकिन वो महसूस करता है। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती समय में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे में ही पड़नी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं।
0: अच्छा तो सिहतिया भैया आप बताइए कि ये गोल्डन आवर टीकन भाभी जिसकी बात कर रही हैं इतना जरूरी क्यों होता है?
1: भाई सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो, यानी कि बच्चा माँ का दूध पी पाए। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो दूध जिसके बारे में अभी टीकर ने बताया था, कोलेस्ट्रॉम, ये बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं भाई।
2: और यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, बच्चे की यही पहली सुरक्षा है।
1: बहुत सही बात कही कपूर साहब। देखो जो मैं बात कर रहा था, टीकन ने बहुत समझदारी की बात कही है।
0: बिल्कुल, तो टीकन भाभी और सिहतिया भैया आप दोनों की बातों से एक संदेश बिल्कुल साफ है, पहला पीला दूध फेंकना नहीं है बल्कि बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, माँ भी सीख रही है, बच्चा भी सीख रहा है। नर्स, आशा दीदी, ANM और डॉक्टर्स की मदद ली जाना बहुत जरूरी है।
1: दोस्तों स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है। इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए दोस्तों। और टीकन और कपूर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, जब मेरे भी घर में किलकारियां गूंजी थी तो हमारे बच्चे की जो माँ है वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चा अस्पताल में था, मैडम भी अस्पताल में थी, तो जो सीनियर नर्स वहाँ होती हैं या टीकन जो अनुभवी हमारी आया होती हैं या हमारी घर की अनुभवी महिलाएं होती हैं, उन्होंने हमें बड़ा संभाला कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और वही बात टीकन ने अभी अभी आपके सामने रखी।
0: बिल्कुल, बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। तो टीकन भाभी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नवजात बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी, बाहर की कोई चीजें बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। पहले 6 महीनों तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन होता है।
0: लेकिन मैं सियातिया भैया आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मी में बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए?
1: भाई सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद जो जवाब आने वाला है जो हम सबके लिए बड़ा लाभकारी है। पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे, माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती।
0: लेकिन बच्चा अगर बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे टीकन देवी जी?
2: देखिए, हर रोना भूख नहीं होता है। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत को लेकर भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम, परिवार का भावनात्मक रूप से उनका साथ देना बहुत जरूरी है, ना कि ताने देकर उसे परेशान करना।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
2: बिल्कुल आरजे बाबू, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है, लगातार दबाव में है, तो स्तन पान भी प्रभावित हो सकता है। परिवारों को माँ को संभालना होगा, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी बेहद जरूरी है।
1: और भाई पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है दोस्तों, और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा जो सारी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई।
0: बिल्कुल सियादिया भैया, वैसे भी आपकी बातों का हमारे जो सुनने वाले हैं विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं।
1: क्या बात?
0: लेकिन अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा के संपर्क की। सियातिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी होता है?
1: भाई त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधे लगाया जाए। सुरक्षित तरीके से इसी को कंगारू केयर भी कहते हैं दोस्तों। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वो सुरक्षित महसूस करता है और स्तन पान में भी मदद मिलती है। ये खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत हो जाता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है आरजे बाबू, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है।
0: तो क्या पिता भी ऐसा कर सकता है सीतिया भैया?
1: भाई सवाल का जवाब है हाँ। सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वो थकी हुई है। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चों की नाक और मुंह खुले रहे, बच्चा दबे नहीं और वो आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों।
2: बिल्कुल, पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है आरजे बाबू।
0: बिल्कुल, तो साथियों, अब हम कुछ आम गलत फहमियां दूर करते हैं। पहली गलत फहमी, पहला पीला दूध खराब होता है। टीकन देवी जी क्या कहना चाहेंगी?
2: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चों को जरूर देना चाहिए।
0: दूसरी गलत फहमी समाज में ये है कि नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी होता है।
1: सच्चाई ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अगली सलाह आपको न दे।
0: और टीकन भाभी, तीसरी गलत फहमी है, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दे।
2: सच्चाई ये है आरजे बाबू कि पहले सही स्तनपान सहायता आपको उसके लिए लेनी चाहिए। माँ को दोष ना दे और स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले, ताकि माँ को दूध को बच्चे को पिलाने में मदद मिल सके।
0: और चौथी गलत फहमी ये है कि नवजात देखभाल सिर्फ माँ का ही काम होता है।
2: सच्चाई पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सबकी भूमिका बनती है आरजे बाबू, सिर्फ माँ की ही नहीं।
0: बिल्कुल। अब सियतिया भैया, बहुत ही जरूरी सवाल आपसे कि किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: भाई, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रोए जा रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: बिल्कुल, अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है, उसका वजन कम है, तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट, स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की बेहद ज्यादा जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। अच्छा सियतिया भैया, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, आज का विषय बड़ा ही खास है, तो ये जो पूरी बातचीत है हमें क्या याद दिलाती है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: देखिए भाई, ये बात हमें याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। दोस्तों, अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: बेहद जरूरी बात कही आपने सेहतिया जी। हर घर 5 संकल्प ले सकता है, गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम दे सकता है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद कर सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिए, मदद कर सकता है। दूसरा, पहला पीला दूध नहीं फेंकना है, और पहले 6 महीने बच्चा केवल माँ का दूध पिएगा, और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना है।
1: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए भाई, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएंगे, और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा आपने सेहतिया जी, माँ का दूध, समय पर टीकाकरण और दोनों मिलकर बच्चे को जीवन में सुरक्षित शुरुआत दे सकते हैं।
0: बहुत ही गहरी बात की है आप दोनों ने, बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और दोस्तों, मैं एक बात और कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें, और ये सीखने की एक अच्छी सरल प्रक्रिया है जो वो आपको बता रहे हैं।
2: बिल्कुल, माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चे को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने। तो साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरी, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देता है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और छठी बात आप कहना भूल गए आरजे बाबू, खतरे के संकेत दिखें तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार ना करें।
0: बिल्कुल ठीकन भाभी, इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो याद रखें, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले यानी समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई, पहला दूध पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत। सेहत सही लाभ कई।

0: तो साथियों, अब समय हो चला है कि कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही को यहीं पर संपन्न किया जाए, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: अरे भैया रामू।
3: हाँ भैया श्यामू।
2: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो,
4: क्या हाल?
3: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
2: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
3: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
4: तो अब ही चलो।
5: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा @90.8 FM।

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल की और साथ ही साथ आप मोटे अनाज की खेती यानी कि श्री अन्न की खेती कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप करते थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जहां पर आपने मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन आज के समय में मोटे अनाज की बाजार में बहुत मांग है और अच्छी कीमत में आप इनको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधारू पशुओं की। जी हाँ किसान मित्रों, हमारे जो पशु हैं और हमारी जो खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से हमें 3 महीने में 6 महीने में उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ हमारे जो दुधारू पशु हैं वो घर का खर्च चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कभी खेती में नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से खेती का और पशुपालन का तालमेल चलता रहता है और जो किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उनको खेती में भी घाटा नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो किसान मित्रों, दुधारू पशु हमारी आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हम पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो वो है गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। तो किसान मित्रों, अगर आपको इन बीमारियों का कोई भी संक्रमण आपके पशुओं में दिखे तो आप तुरंत पशुओं के डॉक्टर से बात करें। किसान मित्रों, खुरपका मुंहपका रोग जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहते हैं, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी हो जाता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगली करना पशु बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है और पशुओं के थनों पर छालों से कभी कभी थनेला की बीमारी हो सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर और थन में पड़े फफोलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात आती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका सही और सीधा रास्ता ये है कि आप अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए पशुओं को FMD के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो अपने पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं और अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमार हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। संक्रमित पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे उनको खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पशु हैं वो रोग मुक्त रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश। किसान मित्रों, मोटे अनाज जिनसे आप बखूबी परिचित होंगे और पहले आप इनको खूब करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने इनको करना छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल बाजार में हर जगह, हमारे देश के अलावा विदेशों में भी मोटे अनाजों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, इनका सेवन करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि मोटे अनाजों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अब किसान मित्रों, मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जाता है। किसान मित्रों, बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चोलाई प्रमुख रूप से मोटे अनाज या यूं कहें श्री अन्न पैदा किए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करेंगे हम कि मोटे अनाजों की इतनी आजकल मांग है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे गुण इनमें पाए जाते हैं जो कि बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग अब बहुत ज्यादा मोटे अनाजों को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं प्रीति चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रीति चौधरी से ये देशभक्ति रागनी। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनको खरीद रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो

मोटे अनाज हैं वो गुड़ों की खान है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होगा ही। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपके फायदे की बात ये है कि जो मोटे अनाज हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो हमारी अन्य जो खेती हैं उनकी अपेक्षा इनमें लागत कम आती है। तो ये भी आपके लिए एक फायदा रहेगा कि आपकी लागत मोटे अनाजों को करने में कम आएगी और आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो आप ज़रूर मोटे अनाज की खेती करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और जहां तक ये श्री अन्न पहुंचेगा आपके द्वारा तो वो भी स्वस्थ रहें और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो और खेती में लागत कम आए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मोटे अनाज की खेती की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का और गायक कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे लोकेंद्र सिंह। इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।
6: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
7: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
9: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सावित्री सत्यवान के साथ साथ और सत्यवान की उस झोपड़ी में पहुंच गई कि जहां सत्यवान के अंधे माता और पिता विश्राम कर रहे थे। तो दोस्तों, किस तरह से आहट सुनकर के सत्यवान की माँ सत्यवान को कुछ कारण लग गई, क्यों कि बगैर सत्यवान के तो बड़ा मुश्किल टाइम कटा करता था माँ बाप का, भला कैसे प्यार में कहते हैं। लेकिन सावित्री अपनी सासू के पास छूने

0: कुमारी पुत्र बधु सावित्री भी है।
1: अच्छा,
0: किसे मैं वर के आया हूँ?
1: अरे तेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी। अरे
0: लेकिन माता जी सारे भेद बताऊंगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुशीनगर जिले का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो। और रेडियो प्रज्ञा पर आपकी दोस्त वो होस्ट नव्या आपके बीच मौजूद है कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर। जी हाँ, आज हम अपने एक अलग एपिसोड के साथ फिर मुखातिब हो रहे हैं आपसे। अभी तक आपने हमारे जितनी भी एपिसोड सुने, जितनी भी कहानियाँ सुनी, उससे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि हिंसा आखिर है क्या और इन बढ़ती घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये घरेलू हिंसा भी अलग अलग रूप में किया जाता है, कभी दहेज के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी किसी बात को लेकर। परंपराओं की आड़ में हो रहे हिंसा को रोकने का प्रयास भी बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उन्हें परंपरा का नाम दे देते हैं। और इन्हीं परंपराओं को तोड़ने के लिए स्मार्ट और रेडियो प्रज्ञा एक पहल कर रहा है जिसमें आप सबसे ये कहा जाता है कि हिंसा सही नहीं, सुने समझे और चुप्पी तोड़े, तभी तो आप हिंसा को नो बोल पाएंगे। लेकिन आज की हमारी कहानी ये दर्शाती है कि अभी भी हम अपनी चुप्पी को तोड़ नहीं रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या हिंसा के खिलाफ आवाज उठेगी या आवाज दबेगी? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी के पात्र हैं रंभा प्रतिभा, जो कि रंभा की सौतन है। उसकी सास और रंभा का भाई। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे पर उसे कोई बच्चा नहीं था। कई बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जब वो महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी सास और ननद अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करा देती है। जब ब्रह्मा ससुराल वापस आती है तो सौतन को देखकर वो घबरा जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बहुत रोती है, लेकिन रोके भी क्या करती। धीरे धीरे इस सच्चाई को मानकर वो उसी घर में सौतन प्रतिभा के साथ रहने लगती है। घर की सारी जिम्मेदारी अब प्रतिभा को मिल चुकी थी और रंभा घर का सारा काम करती रहती है, बर्तन से चूल्हा चौका और भी सब कुछ। लेकिन रसोई घर में जाकर खाना बनाना या निकाल कर कुछ खा लेने का अधिकार नहीं था उसे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ रंभा और प्रतिभा थी, प्रतिभा भी किसी काम में बहुत व्यस्त थी। इधर रंभा का पूरा दिन काम में निकल गया था, उसने पूरे दिन में कुछ खाया नहीं था। जब रंभा को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी सौतन प्रतिभा से कुछ खाने को मांगा, लेकिन प्रतिभा रंभा की बातें सुनकर भी अनसुना कर देती। रंभा कुछ देर इंतजार करने के बाद किचन में जाती है और अपने लिए खाना निकाल कर लाती है। बस इतनी ही देर में प्रतिभा उसे देख लेती है और अपनी सास को बता देती है। उसकी सास रंभा को गाली देती है और कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल जाता है और ये समय क्यों ही निकलता रहता है। रंभा के साथ उसके ससुराल की किसी व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं था। उसकी एक छोटी सी भी गलती पर कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। रंभा इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे कम दिखाई देने लगा था। और इधर प्रतिभा की शादी के कुछ महीने बाद वो गर्भवती हुई और उसे एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो 5 साल का हो गया तो उसकी माँ ने उसे ये सिखा दिया था कि रंभा को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो कोई गलती करे तो उसे डंडे से मारना। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्रतिभा का बेटा बिल्कुल वैसा ही करता था। रंभा को उसकी सास हर बात पर डंडे से हाथ पर मारती थी और रंभा चुपचाप सहती थी। यहाँ तक कि वो अपने मायके में भी कुछ नहीं कहती थी। एक वक्त आया जब रंभा बुरी तरह बीमार हो गई, ना उसे दिखाई देता ना वो चल पाती। महज उम्र थी 35 साल, लेकिन वो 35 साल की उम्र में ही 60 साल की बूढ़ी लगने लगी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि अब रंभा मर जाएगी तो उन्होंने कहीं से उसके भाई का नंबर ढूंढ निकाला और उसे फोन कर बुलाया। जब भाई आया तो रंभा की सास ने झूठ बोल दिया कि वो हॉस्पिटल गई है। भाई दिन भर घर के बाहर पड़ा रहा। जब रात होने पर भी रंभा की कोई खबर नहीं मिली तो वो जबरदस्ती घर के अंदर गया और वहाँ देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बिना देर किए वो भाई अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल आते आते रंभा की मृत्यु हो गई और ये सब देखकर उसका भाई अंदर से टूट गया। वो ये सोच रहा था कि उसकी बहन ने उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसे इंसाफ चाहिए था। उसके भाई ने उस पर हुए हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच पड़ताल के बाद रंभा के ससुराल के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि ये बात साफ हो गई थी कि रंभा के साथ हुए इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी फैमिली, अपने ससुराल वालों का ही हाथ है। घरेलू हिंसा करने के जुर्म में वो सभी जेल चले गए। बस इस बात की तकलीफ थी कि अगर रंभानी पहले ही अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ एक्शन लिया होता, अपनी फैमिली को बताती या किसी की मदद लेती, तो आज वो जिंदा होती। ये कहें कि हमारे भारत में आए दिन इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है जिसमें न जाने कितनी महिलाएं हिंसा को सहते हुए अपनी जान दे देती हैं, लेकिन फिर भी अपनी वो चुप्पी नहीं तोड़ती हैं। लेकिन आज हमें सुनने वाली उन महिलाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिनके साथ किसी भी तरह का हिंसा हो रहा हो, वो हिंसा की शिकार हो रही हो, तो आप डरे नहीं, आप आवाज उठाएं।
3: तो सुना आपने रंभा के साथ हुए हिंसा की कहानी। कहानी में आपने सुना कि रंभा निशंतान थी और उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है, जिसके बाद प्रतिभा को घर की मालकिन बना दिया जाता है और रंभा एक नौकरानी की जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे उसके खाने पीने में भी कमी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और कुछ दिनों में उसे दिखाई देना भी बंद हो जाता है और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बिस्तर से उठ पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब इस बात की खबर आस पड़ोस के लोगों को लगती है तो वो कहीं से तो रंभा के भाई का नंबर ढूंढ निकालते हैं और उसे फोन करके बुला देते हैं। जब भाई आता है तो वो अपनी बहन की इस बुरी हालत को देख काफी चिंतित होता है, उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी बहन के साथ क्या हुआ था उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसके ससुराल वालों के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज कराता है और उन्हें सजा दिलवाता है। लेकिन ये सिर्फ रंभा की कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में बहुत सी महिलाओं की है जो ना तो अपनी तकलीफ किसी से कह पाती हैं और ना ही इसके खिलाफ आवाज उठा पाती हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हिंसा हो रही है सिर्फ वही आवाज उठाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना है या हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। आप अपने समाज की बुराइयों को रोकने में सक्षम हैं और इसके लिए हमारी सरकार भी हमारी महिलाओं के साथ है। अगर कोई महिला कमजोर है और हिंसा जैसी बातों से बिल्कुल अनजान है तो आसपास के लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उस महिला को इस बात से रूबरू कराएं कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है और उसे रोकने का उपाय भी जरूर बताएं। अगर वो सहमत है तो उसका साथ दें, ना कि देख के चुपचाप अपने घर में चले जाएं, क्योंकि पता है ना इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। और बाकी आप सभी को जागरूक करना हमारा काम है। हमने अपने हर एपिसोड में आपको बताया है कि हिंसा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरह अगर सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो हिंसा हमारे समाज से जड़ से खत्म की जा सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी महिलाएं जागरूक बनें और एक दूसरे का साथ दें, तभी तो हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा यह मिशन पूरा हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये वाली कहानी आप सभी को समझ में जरूर आई होगी और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का आप सभी लाभ भी उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और हाँ, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना हुई है या हो रही है तो आप इसकी जानकारी हम तक भी पहुंचा सकती हैं। नंबर हमारा है 91-173-19-819। तो अब हिंसा को सहे नहीं, इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और ये कहें कि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
2: आपके शहर में ही आपके लिए बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जहां आप कॉल करके अपने साथ हो रहे हिंसा की जानकारी दे सकती हैं और अपनी मदद के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल जरूर करें। दस नब्बे या 112 ये नंबर डायल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं या अपने क्षेत्र के महिला थाना या वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला एवं बाल विकास अधिकारी से सहायता ले सकती हैं। इसके अलावा आप घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपने साथ हो रहे हिंसा की इस कहानी का अंत कर सकती हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगी कि आप हिंसा का शिकार बनना चाहती हैं या बंद करना चाहती हैं। आपकी एक आवाज न जाने कितनी महिलाओं को जिंदगी देगा, तो पहले सुनिए समझिए, फिर वक्त है चुप्पी तोड़ने का, तो चुप्पी तोड़िए और बोलिए हिंसा को नो। आज की इस कहानी से हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सोचा था कि आप समझेंगी कि हिंसा क्या है और इसे कैसे रोकना है, और हम सब यही चाहते हैं कि आप हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। हिंसा को नो का ये एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है। फिलहाल ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मिलेंगे आपसे नए स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक इंतजार हमारा।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Chan chan ka rakhe dhyan TB Mukt Bharat Abhiyan.
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक

फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 1 की ध्वनिशाला में।
4: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? बहुत मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए। ना तो हमने कोई कहानी कही और ना ही कोई कविता कही। अब आपके बिना मन नहीं लगता। मन करता है कि आपके साथ बहुत देर तक बस बातें करते रहें, गपियाते रहें, बतियाते रहें। तो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि वे कौन हैं। वे हैं आस्तिक सिन्हा। तो क्यों ना बच्चों, मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं की तरफ से।
5: धन्यवाद।
4: अच्छा आस्तिक, ये बताइए, कभी आपने आम का बगीचा देखा है?
5: बिल्कुल।
4: आम के बगीचे में किसके पेड़ होते हैं?
5: आम के।
4: मैं टेस्ट कर रही थी आस्तिक को कि आस्तिक क्या जवाब देते हैं। भाई, आम के बगीचे में तो आम के पेड़ ही होंगे। तो आस्तिक हैं चतुर समझदार आपकी तरह। बच्चे चतुर और समझदार होते हैं और उनकी चतुराई और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। किसे? बड़ों को। तो आस्तिक आम के बगीचे में होते हैं आम के पेड़, ठीक है? तो कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े हैं?
5: नहीं।
4: नहीं? और अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको कि पेड़ बहुत नीचा है और आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की है?
5: हाँ।
4: ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है आम की कहानी। आस्तिक तैयार है आम की कहानी सुनने के लिए?
5: बिल्कुल।
4: तो हुआ यूं कि झुमकी नाम की एक बच्ची थी। झुमकी आम के बगीचे में थी, सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पता है आस्तिक उस पेड़ पर क्या था?
5: नहीं।
4: उस पेड़ पर लटका हुआ था एक पका हुआ आम। जब झुमकी ने आम देखा तो उसने सोचा अपने मन में कि ये आम तो मुझे ले लेना चाहिए। तभी वहां कौन आया? तभी वहां झुमकी का भाई आया, मिदना। मिदना के हाथ में थी गुलेल। झुमकी ने मिदना से कहा, भैया वो देखो आम, मुझे वो आम चाहिए, मुझे आम ला दो ना। तो मिदना ने कहा, ठीक है झुमकी, मैं ला देता हूँ। लेकिन कैसे लाएंगे? झुमकी ने पूछा। तो मिदना ने कहा कि मेरे पास गुलेल है, मैं गुलेल से निशाना लगाऊंगा आम पर और आम खट से टूट जाएगा, और जब आम टूट जाएगा तो तुम ले लेना। मिदना की ये बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और ताली बजाकर हंसने लगी। उसके बाद आस्तिक पता है क्या हुआ?
5: नहीं।
4: उसके बाद हुआ कि मिदना ने गुलेल पर लगाया एक पत्थर, अपनी एक आंख बंद की, गुलेल का धागा खींचा और आम की दिशा में छोड़ दिया। खटा की आवाज हुई और निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। बताओ आस्तिक, निशाना कहाँ लगा था?
5: आम की डंडी पे।
4: जिस डाल पर आम लटका हुआ था निशाना वहीं लगा और खट की आवाज से आम टूट गया। लेकिन वहां पर एक काला कौवा भी था जो ठीक उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि कब ये आम टूटे और कब वह आम को ले जाए। तो अच्छा आस्तिक ये बताओ कि क्या आम झुमकी को मिलेगा या फिर आम कौवा ले जाएगा?
5: कौवा ले जाएगा।
4: बिल्कुल सही। जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवा आम की तरफ लपका और उसने अपनी चोंच में आम की जो ऊपर छोटी सी डंडी होती है उसे पकड़ लिया और वह उड़ चला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। अब बताओ ये मुसीबत क्या हो सकती है?
5: आगे कोई शिकारी है।
4: हाँ ये भी हो सकता है। और क्या मुसीबत हो सकती है?
5: और आगे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो।
4: पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं और कौवे ने मधुमक्खी का वह छत्ता नहीं देखा और वह टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो सारी मधुमक्खियां भिन-भिन करती करती कौवे से चिपट गईं और उसे काटने लगी क्योंकि कौवे ने उनका घर तोड़ दिया था। अब बताइए आस्तिक, जब मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया तो क्या ये सही किया या गलत किया?
5: सही किया।
4: क्यों सही किया?
5: क्योंकि कौवे ने उसका घर तोड़ दिया।
4: मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाया, अपना घर बनाया और कौवे ने देखा ही नहीं और सीधा भिड़ गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो मधुमक्खियों का छत्ता यानी उनका घर टूट गया। इस वजह से मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया। जब मधुमक्खी ने कौवे को काटा तो उसे बहुत जोर का दर्द हुआ और वह क्वां क्वां करके उसने मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो आज से क्या हुआ होगा?
5: आम गिर गया होगा।
4: बिल्कुल सही। आम उसकी चोंच से गिर गया और सोचो कहां पहुंचा होगा?
5: जमीन पे।
4: आम जमीन पर नहीं पहुंचा। आम दरअसल गिर गया एक घोंसले में जो उसी पेड़ पर था और जैसे ही आम उस घोंसले में गिरा, पता है आस्तिक उस पेड़ पर कौन थी?
5: नहीं।
4: चिड़िया तो नहीं थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी गिलहरियां। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन की तीन गिलहरियां वहां थी और आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी आस्तिक?
5: क्योंकि उन्हें भूख लगाई होगी।
4: हाँ आस्तिक, ये तो हो सकता है कि गिलहरियों को भूख लगी हो और वे आम को ललचाई नजरों से देख रही हो। लेकिन तभी एक और गिलहरी थी, खूब चतुर सयानी, उसने झट से घोंसले में से वह आम ले लिया और जैसे ही उसने वह आम लिया और जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, इससे पहले कि वह उसे खा पाती, घोंसले में जो अंडे थे उसमें से काऊ काऊ काऊ करते करते बहुत सारे बच्चे चीखे। पता है आस्तिक, ये तो कौवे का घोंसला था और अंडे भी उसी के थे। अंडे में से उसके बच्चे निकले और वे काऊ काऊ करने लगे। अचानक से ये काऊ काऊ की आवाज सुनकर गिलहरी डर गई और जब गिलहरी डरी तो उसका मुंह खुला और जब उसका मुंह खुला तो आस्तिक आगे क्या हुआ होगा?
5: आम नीचे गिर गया होगा।
4: आम नीचे गिरा और ये जा पहुंचा एक आदमी की पगड़ी में। अच्छा ये बताओ आस्तिक, ये आदमी कौन होगा?
5: कोई किसान
4: या फिर आम के बगीचे का मालिक। इसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल खूब मेहनत करते हैं, आम के बगीचों की देखभाल करते हैं, एक एक पत्ते को सहलाते हैं बहुत प्यार से। तो इसलिए खूब मेहनत करके वे थक गए थे और उसी आम के पेड़ के नीचे वे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताना क्या था, ये तो उन्हें नींद ही आ गई। इतनी गहरी नींद आई आस्तिक उन्हें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आम उनकी पगड़ी में गिर गया। और पता है आस्तिक, यहाँ पर दो प्राणी और थे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकता है?
5: खरगोश।
4: दो खरगोश बहुत गौर से सोहन लाल को देख रहे थे। सोहन लाल को नहीं, उसकी पगड़ी में रखे हुए आम को देख रहे थे ललचाई नजरों से। तब तक कौआ भी आ गया था और पेड़ के ऊपर से गिलहरियां भी सोहन लाल की पगड़ी में झांक रही थी। अब इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, सबकी नजर किस पर थी?
5: आम पर।
4: सबने सोचा कि आम तो हम ले ही लेंगे। तब तक झुमकी भी सोहन लाल के पास आ गई थी। उन्होंने झट से सोहन लाल की पगड़ी में से आम उठाया और खुशी के मारे वे चिल्लाने लगी, मिल गया आम, मिल गया आम। झुमकी की यह खुशी देखकर मिदना को भी बहुत खुशी हुई और उसने अपने गुलेल की तरफ देखा और कहा, शाबाश गुलेल, तुमने खूब निशाना लगाया और झुमकी को मिल गया उसका प्यारा रसीला मीठा सा आम। झुमकी के हाथ में था आम और पेड़ पर सारे जो प्राणी बैठे हुए थे उसमें कौन कौन है? कौवा है, गिलहरी है, कौवे के बच्चे हैं और नीचे जमीन पे जो बैठे हुए हैं खरगोश, सब के सब झुमकी की तरफ देख रहे थे क्योंकि झुमकी के हाथ में था मीठा रसीला प्यारा सा आम। झुमकी ने आम धोया और उसे अपने भाई मिदना के साथ बांटकर खाया। लेकिन पता है आसिक, झुमकी ने बाकी सब प्राणियों को भी आम के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। तो झुमकी ने खरगोश के साथ, गिलहरियों के साथ, कौवे के साथ और कौवे के बच्चों के साथ मिलकर आम खाया। तो बच्चों बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी?
5: बहुत मजेदार थी।
4: मजा आया?
5: हाँ।
4: अच्छा आस्तिक, ये बताओ कहानी में ऐसे कौन से मोड़ थे जहाँ से कहानी बदल गई? हमें जैसा लगा कि कहानी तो ऐसे घटी होगी, लेकिन पता चलता है कहानी में तो ये हुआ ही नहीं। तो आज एक बता सकते हैं कि कहानी ने कहां से मोड़ लेना शुरू किया?
5: हाँ, कहानी ने वहां से मोड़ लेना शुरू करा जब कौवा छत्ते से टकरा जाता है।
4: शाबाश। और उसके बाद जब गिलहरी आम को पकड़ लेती है, उसके बाद कौन सा मोड़ आता है?
5: उसके बाद अंडे में से चूजे बाहर आके चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी डर जाती है।
4: और जिसे आप चूजे कह रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं?
5: कौवे के
4: बच्चे। और कौवे के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? कुहू कुहू कहेंगे या फिर काऊ काऊ कहेंगे?
5: काऊ काऊ कहेंगे।
4: अगर अचानक आपके कान के पास यही आवाज आए, काऊ काऊ काऊ, तो आप भी डर जाएंगे नास्तिक?
5: हाँ।
4: ऐसे ही गिलहरी भी डर गई थी। अब जब गिलहरी डर गई तो कहानी में आया तीसरा मोड़ और गिलहरी के मुंह से छूट गया आम और जा गिरा सोहन लाल की पगड़ी में, जहां से झुमकी ने वह आम उठा लिया। तो ये थी हमारी आम की कहानी। अच्छा आस्तिक, ये बता सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी का नाम आम की कहानी क्यों रखा गया होगा?
5: आम इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार झुमकी के हाथ में आ ही गया।
4: हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आम के आसपास ही तो घूम रही है। झुमकी ने आम को देखा और मिदना ने आम पर निशाना लगाया, कौवे ने आम पकड़ा, कौवे के मुंह से आम छूट गया तो गिलहरी ने पकड़ा, गिलहरी के मुंह से आम छूट गया तो गिरा सोहन लाल की पगड़ी में और फिर झुमकी ने वह आम उठा लिया। क्या आस्तिक, इस कहानी का कोई और नाम भी हो सकता है?
5: हाँ,
4: बताओ तो जरा।
5: आम की मुसीबतें।
4: आम की मुसीबतें, झुमकी का आम, कौवे की चतुराई, गिलहरी का रोना और मिदना का निशाना, इस कहानी का कोई भी नाम हो सकता है। जब हम किसी कहानी का कोई नाम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। या तो कहानी का नाम किसी एक खास व्यक्ति पर हो सकता है, किसी खास चीज पर हो सकता है या फिर किसी घटना पर हो सकता है। इस कहानी में हमने कहानी का नाम किस पर रखा है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है या फिर किसी चीज के नाम पर रखा है?
5: हमने कहानी का शीर्षक किसी चीज के नाम पर रखा है।
4: और वह चीज क्या है?
5: आम।
4: क्योंकि आम के इर्द गिर्द ही कहानी की पूरी घटनाएं घूमती हैं। इस

0: लिए हमारे केंद्र में है आम, इसलिए हमने कहानी का शीर्षक रख दिया आम की कहानी। बच्चों ये कहानी आप पढ़ सकते हैं रिमझिम में, और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं एनबीटी द्वारा प्रकाशित आम की कहानी में भी। चित्र कथा है, यानी इसमें चित्रों के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैंने तो अपने एक अलग अंदाज से कहानी सुनाई, लेकिन बच्चों आप इसी चित्र कथा के आधार पर अपनी कहानी बना सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं, और अपनी कहानी का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो लड़की को कोई अपना नाम दे सकते हैं, जैसे बबीता, जैसे मुनिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप लड़के को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया मिदना। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मनोज रख सकते हैं, असलम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और तो और आप कौवे का, गिलहरी का भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो खरगोश के नाम भी रख दीजिएगा। तो नाम रखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप नाम के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहानी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, आज तक आपने और सभी बच्चों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुनी होगी मुझे उम्मीद है। तो आज तक ये बताइए कि कहानी में सबसे पहले क्या आया?
1: कहानी में सबसे पहले लड़की आई।
0: और लड़की ने क्या देखा था?
1: लड़की ने आम देखा।
0: उसके बाद क्या आया?
1: उसके बाद कौवा आया।
0: ठीक है, और कौवा तो उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन कौवे ने आम को पकड़ा, उससे पहले क्या आया?
1: उससे पहले मिदना आया।
0: और मिदना के हाथ में क्या था?
1: गुलेल।
0: तो लड़की के बाद आई गुलेल, और गुलेल से टूटा आम। उसके बाद कौन आया?
1: गुलेल के बाद कौवा आया।
0: और कौवे के बाद कौन आया?
1: कौवे के बाद छत्ता आया।
0: छत्ते के बाद कौन आया?
1: छत्ते के बाद घोंसला आया।
0: और घोंसले के बाद कौन आया?
1: गिलहरी।
0: और गिलहरी के बाद कौन आया?
1: सोहनलाल।
0: सोहनलाल या सोहनलाल की पगड़ी?
1: सोहनलाल की पगड़ी।
0: पगड़ी सोहनलाल ने पहनी हुई थी, तो सबसे आखिर में आए सोहनलाल। और उसके बाद कहानी समाप्त होती है आम के ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी आम पर और खत्म हुई आम पर। लड़की ने यानी कि झुमकी ने एक आम देखा, उसने सोचा कि मुझे ये आम चाहिए ही चाहिए, और अंत में उसे आम मिल गया। अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि कहानी में इतने सारे पात्र हैं, कहानी में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो क्या चीज किसके हाथ में थी, कौन सी चीज कहाँ ऊपर थी, और कौन सी चीज किसके अंदर थी? तो आप बता पाएंगे कहानी को याद करते हुए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए कि गुलेल कहाँ थी?
1: गुलेल मिदना के हाथ में।
0: शाबाश। और घोंसला कहाँ था?
1: पेड़ के ऊपर।
0: वेरी गुड। और कौवे के बच्चे कहाँ थे?
1: घोंसले में।
0: शाबाश। और पेड़ के ऊपर कौन था?
1: गिलहरी।
0: और सोहनलाल के सिर पर क्या था?
1: पगड़ी।
0: तो हमने ये देखा कि कहानी में बहुत सारी चीजें आई हैं। गुलेल आई है, घोंसला आया है, घोंसले में बैठे हुए बच्चे आए हैं, और गिलहरी आई है, और सोहनलाल अपनी पगड़ी के साथ आए हैं। तो कोई चीज कहीं पर है तो और कोई चीज कहीं पर है। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, अब आपको करना क्या है, आपको अपनी कहानी बनानी है, और आप चाहें तो अपनी कहानी के चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिए। और जब आप कहानी बनाएंगे तो तस्वीर बनाना मत भूलिएगा, और जब तस्वीर आपने बना ली है तो उसमें रंग भरना मत भूलिएगा। हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपका और आपकी बनाई हुई कहानियों का और तस्वीरों का। तो बच्चों, हमने इस कहानी में ये देखा था कि एक आम को कोई ना कोई ले जा रहा था, कभी कौवा ले गया तो कभी गिलहरी ले गई, है ना आस्तिक? ऐसा ही कुछ नानी के साथ हुआ। नानी की भी कोई चीज कोई चुरा कर ले गया था, आपको कोई गीत याद आ रहा है आस्तिक?
1: हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है।
0: तो क्यों ना आप वह गीत सुना ही दीजिए।
1: ठीक है।
0: तो लीजिए हम सुनते हैं आस्तिक से वह गीत, नानी वाला गीत।

0: बहुत मजेदार गीत सुनाया आपने कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छा, यहाँ पे चोरों को काला क्यों कहा गया है? क्या उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा था? सोचो आस्तिक, और सोच कर बताना कि आखिर चोरों को काला क्यों कहा गया है, काले चोर ले गए?
1: उन्हें काला इसलिए कहा होगा कि वो दिखने में थोड़े काले हों।
0: हाँ, हो सकता है कि वे सांवले रंग के हों, इसलिए उन्हें काले चोर कह दिया हो, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आप इस कहानी में जो अलग अलग पात्र आए हैं, आप उन्हें क्या नाम देना पसंद करेंगे? देखिए, शुरू में जब हमने कहानी कही थी तो हमने अलग अलग पात्रों को अपने हिसाब से नाम दिया था। लड़की का नाम रखा था हमने झुमकी, और लड़के का नाम रखा था मिदना। लेकिन आस्तिक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कहानी को लिखते हैं तो आप इन पात्रों को क्या नाम देना पसंद करेंगे? तो हम शुरू करते हैं लड़की से।
1: मैं लड़की को नाम देना चाहूंगा गौरी।
0: और कौवे का नाम?
1: कौवे का नाम गर्व।
0: क्या नाम रखेंगे?
1: गर्व।
0: गर्व। और लड़के का नाम?
1: लड़के का नाम दर्श।
0: दर्श। और पगड़ी वाले आदमी का नाम?
1: मोहनलाल।
0: मोहनलाल। और आप खरगोश को क्या नाम देना पसंद करेंगे?
1: पहले खरगोश को हम कह सकते हैं हनी, दूसरे को कह सकते हैं बनी।
0: शाबाश। और आप गिलहरी को क्या नाम देना चाहेंगे?
1: मैं गिलहरी को नाम देना चाहूंगा जारुल।
0: तो ये था आस्तिक का कहना कि उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिए हैं। बच्चों, आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं अपने अपने पात्रों के हिसाब से। किसी का नाम कुछ हो सकता है, तो किसी का नाम कभी कभी हम अपने नाम पर ही रख लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आस्तिक का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। तो हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने के लिए। आस्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमारे साथ कहानी कहने में मदद करने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इतना मधुर सुरीला गीत सुनाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो हमने धन्यवाद दिया आस्तिक का, और एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि आपको अपनी कहानी तस्वीरें कहाँ भेजनी है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो। तकनीकी सहयोग विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना?
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
3: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
4: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
3: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
4: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
3: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ।

0: जहाँ जहाँ पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा। जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूँ आपके साथ में आपकी आरजे शिखा। और आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने रेडियो शो की जिसका नाम है परवरिश और पोषण। आप समझ गए होंगे कि यहाँ बातचीत होगी पेरेंटिंग की, यहाँ बातचीत होगी आपके बच्चों से रिलेटेड हर टॉपिक पे। और सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगी, मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हर बार चेयर के सामने होंगी एक एक्सपर्ट जो कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स और अपने स्किल के बेस्ड पे आप सबसे एक तरह से एज अ काउंसलर अपनी जो राय है वो साझा करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अनामिका कर्ण मैम जो की PGT साइकोलॉजी एंड काउंसलर हैं JP इंटरनेशनल स्कूल की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार सभी को और थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: तो मैम आप एक काउंसलर हैं JP इंटरनेशनल स्कूल में, आप इतने अच्छे से बच्चों को हैंडल करती हैं, मैंने काफी आपके बारे में सुना भी है। तो आज जब बातचीत कर रहे हैं, मेरा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा पेरेंट्स को लेकर के है, पेरेंट्स और जिम्मेदारी, है ना। जैसे ही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत भी है, इसकी शादी कर दो जिम्मेदार हो जाए, या बच्चा प्लान कर लेंगे अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगी। तो एक तरह से हमारे यहाँ ये सोच है कि जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो जिम्मेदारी के नाम पे कई बार पेरेंट्स ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, ओवर डू मोड में चले जाते हैं, ओवर कंट्रोल मोड में चले जाते हैं। तो मैं आज उस टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा राय जानना चाहूंगी आपकी कि कैसे पेरेंट्स को हैंडल करना है कि जब न्यूली वो पेरेंट्स बनते हैं।
2: जी देखिए, जैसे हम भी कभी

0: थे और हमने भी सारी चीज़ें पहले की हुई हैं। हर एक चीज़ में रोक टोक करना एक बच्चे को डिपेंडेंट बना देता है, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, डिसीजन मेकिंग में उसके प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कर नहीं पाता है कि हाँ भाई मैं ये करूँ या अगला चीज़ मेरे लिए सही होगा, सही डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि हर जगह उसको रोक टोक किया गया हो। तो घबराहट उसके अंदर होती है कि हाँ भाई ये नहीं करना है या करना है, ये करूँगा तो मुझे क्या रिएक्शन पेरेंट्स से मिलेगा।
1: यानी कि तो, आपका कहने का मतलब है जैसे पेरेंट्स बनते हैं तो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि अपने बच्चों को हम हमेशा सही गलत बताते चले।
0: जी हाँ, जैसा हम बिहेव करने लगते हैं कि भाई हम हैं डोमिनेंट, हम हैं कंट्रोल, हमारे हाथ में है, बस हम अपने हिसाब से इसको चलाते रहें। लेकिन बच्चा पालना या उसको बड़ा करना इज नॉट सिर्फ कि हाँ हम उसको कंट्रोल करें अपने हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई करियर्स में भी सिलेक्शन बच्चा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बचपन से हमने उसको डिसीजन नहीं लेने का फ्रीडम दिया नहीं, इंडिपेंडेंट है नहीं वो। अब सिंपल सी बात, हम एग्जाम्पल लें कि जो राह चलते वो लेबर्स होते हैं, चाहिए इनके बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, पेरेंट्स काम करने गए में अपने छोटे भाई बहनों को पाल रहे होते हैं, उनको खाना खिलाना है, दिन भर संभालना है, सब चीज करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि रीजन उसके पीछे ये है कि हम बच्चों को कहीं बाहर जाना है तो 10 बार टोकेंगे, नहीं इतना समय हो गया, अब नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, और रोड पे नहीं जाओ क्योंकि हो सकता है गाड़ियां ऐसी आती हैं। तो उनको अपना स्टेप उठाने देना चाहिए, कदम उठाने देना चाहिए डिसीजन लेने में, तब बच्चा सीख पाएगा कि हाँ भाई क्या सही है क्या। उसको उसका रिजल्ट देखने देना चाहिए कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल होके वो एक पर्टिकुलर चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे और उसका रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कंसिक्वेंसेस क्या हैं, वो फेस करे, तब वो सही गलत समझ पाएगा।
1: अच्छा एक चीज बताइए मैम, जैसे ठीक है बीइंग अ पेरेंट अगर हम रोक टोक कर रहे हैं, है ना, तो उसका बहुत ज्यादा रोक टोक कुछ मामलों में तो ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो बच्चे को हो सकता है आप ना बोलें कि चलो खुद से सीखेगा, हो सकता है उसको चोट लग जाए, आपको पता है वो चीज, मे बी वो जहां से आगे बढ़ रहा है आगे गड्ढा है वो गिर सकता है, तो एज अ पेरेंट हम बताते हैं भाई उधर मत जाओ, हाथ नहीं पकड़ेंगे रोकेंगे नहीं लेकिन उसको बता दिया, वो एक पेरेंटिंग हो गई। एक होती है हर चीज पे, दीवार पे मत लिखो, पानी गिरा दिया, खाना सही से नहीं खा रहे, है ना, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, जो भी है, हर एज ग्रुप का मेरे ख्याल से पेरेंट्स का एक अपना चैलेंज आ जाता है कि बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं है, है ना, कई बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं नेक्स्ट लेवल के, जैसे मेहमान आए तो वो पेरेंट्स की सुनेंगे नहीं, या थर्ड पर्सन के आते हैं वो पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ऐसी अलग अलग सिचुएशन है। तो जब पेरेंट्स ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
0: रिजल्ट ये होता है कि हाँ भाई अब बच्चों को हमने टोकना हर जगह जो शुरू किया, बच्चों को कोई गेस्ट आया उसके सामने भी कभी टोक दिया, तो ये क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि मेरे तो इज्जत कोई है नहीं, कहीं पे भी मुझे बोल दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा, तो वो डर वो शर्म उसकी निकल जाती है। तो अगर कहीं बच्चा गलती कर रहा है तो इसको पर्टिकुलर एक अलग तरीके से बताने का ये है, और या नहीं तो आप उसको अकेले में बिठा के या आराम से जब वो काम हो, जब सीखने के मोड में हो, तब उसको एक्सप्लेन करके देखें। या हम क्या होता है, बच्चा जो है लर्निंग करता है मॉडलिंग के थ्रू, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग होती है, लर्निंग होती है, जिसमें से एक मॉडलिंग है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो बच्चा हम बोलते हैं ना बच्चे क्या है, कॉपी कैट होते हैं, तो हर एक चीज वो कॉपी करते हैं, तो बच्चे ये भी चीज सीखते हैं कहीं ना कहीं से, जो फॉल्टी लर्निंग कहलाती है। तो अब इस फॉल्टी लर्निंग को होने से रोकना है या उसको हमें हो गई है तो उसे निकालना है, तो उसका एक तरीका होता है कि उस तरीके से, अब जैसे कि हम लर्निंग में रीइन्फोर्समेंट्स यूज करते हैं, तो रीइन्फोर्समेंट मतलब अगर बच्चा गलत चीज कर रहा है तो हम नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट या पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट जब वो सही कर रहा है, तो अब स्कूल्स में बच्चों को कुछ अच्छा किया, कुछ क्रिएटिव किया तो उनको स्टार दिया जाता है, वो क्या पर्पस होता है,
1: एप्रिसिएशन,
0: तो एप्रिसिएशन मिला कुछ अच्छा किया, तो वैसे ही कुछ नेगेटिव किया तो उसका वो एप्रिसिएशन है, चाहे वो जो पसंद वाली चीज है उसकी हम उससे छीन लें, छीन लें इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है या एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बैठ रहा है पढ़ने, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर बच्चे को उसकी जो फेवरेट चीज है कि हाँ भाई उससे अलग कर दें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर तुमने नहीं किया जो काम दिया गया है तो उससे वो चीज ले लें, वो चीज उसको ना मिले।
1: अच्छा, कई बार पेरेंट्स का है कि दो थप्पड़ लगा दो सुधर जाएगा, जो ये जो हमारे यहाँ एक है ना कि बच्चों को पीटना पाटना इज लाइक ठीक है मारपीट, डू यू थिंक इट हेल्प?
0: मारपीट ही हर चीज का सॉल्यूशन
1: ना, जो कि बच्चे को दूसरी तरह से
0: मैंने वही बोला, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, हम पिटाई नहीं कर रहे हैं। पिटाई करना, अब बच्चा सोचता है कि हाँ भाई एक बार दो बार उसकी पिटाई हो गई तो नेक्स्ट टाइम से उसके दिमाग में ये होता है कि हाँ भाई गलती करूंगा, दो थप्पड़ मारेंगे ही और उसके बाद तो ठीक है उतना मैं खा लूंगा। लेकिन जो चीज उसे पसंद है वो अगर आप उससे छीन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो वो नेक्स्ट टाइम उसे वो चाहेगा, वो चाहिए तो वो काम करेगा,
1: वो अपने आप सेल्फ ड्रिवन रहेगा
0: उस चीज को पाने के लिए, वो चीज वो करेगा।
1: Okay.
0: तो मतलब सिखाने का कोई सिखाने का तरीका होता है, हर बार हम हाथ उठाएं और हर बार हम लाठी उठाएं ये जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं। अच्छा मैम, जैसे स्कूल में एज अ काउंसलर कई बार आपके सामने बहुत से ऐसे केसेस आते होंगे बच्चों को जब आप काउंसल करती हैं, तो क्या ऐसे कॉमन तरह के चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि वहाँ आप एक रोल प्ले करते हैं, थोड़ा सा आप शेयर करना पसंद करेंगे?
0: कॉमन मोस्टली यही है, अभी प्रेजेंटली ये आ रहा है कि हाँ भाई बच्चे लिखना नहीं चाहते, जो कोविड का टाइम खत्म हुआ है उसके बाद मैंने अपने अपने अपने घर में भी ये चीज देखा है जब मेरा बेटा है, तो एक्चुअली क्या है वो लिखने से हट गए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई और ये, लेकिन अब वापस से उस लेवल पे लाने के लिए अब टीचर्स को लगता है कि हाँ भाई ये लिख नहीं रहा है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस राइटिंग की वो खत्म हो गई हुई है। और बिना किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस के, बिना किसी इसके, किसी को लेबल कर देना ये सबसे बड़ा गलत है।
1: सो अच्छा मैम, आज के टाइम में मुझे लगता है पेरेंट्स भी और बच्चे भी थोड़ा टेम्पर को बहुत जल्दी लूज आउट कर जाते हैं, पेशेंस की कमी आ गई है,
0: रेजिलियंस भी नहीं है, एग्रेशन है।
1: तो एज अ काउंसलर आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है पेरेंट्स भी कई बार गिव अप कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, नहीं समझ में आता, बच्चे को एक ही चीज दस बार समझा रहे, रोज समझा रहे, तो हाउ डू यू लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट एज अ पेरेंट, आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें?
0: एक पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे आपने बताई कि हाँ भाई गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन हो जाता है, तो एग्रेशन कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है, वो अपने लिए भी और आज के जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें ये हो गया है कि हाँ भाई किसी ने कुछ बोल दिया वो सहन नहीं होता है और तुरंत लड़ जाते हैं, तो ये है कि लड़ाई हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, या गुस्सा करके डांट करके, वही मैंने अभी कहा जैसे कि हम मार के पिटाई करके ही हर चीज नहीं सिखा सकते,
1: नहीं सिखा सकते,
0: तो वैसे उसके लिए भी अलग तरीका है, एग्रेसिव हो के हम अपना वो टेम्पर अगर दिखाएं बच्चे को तो माइट भी वो गलत इफेक्ट दे उसको। और ये टीनेजर्स में या आजकल जो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो मैंने देखा है मेरे क्लास 11 12th के बच्चों में, तो ये है मोस्टली उनका सोशल मीडिया पे रेगुलर रहना, ज्यादा से ज्यादा टाइम बताना, और प्लस जो फ्रेंड सर्कल भी इनका है, तो फ्रेंड सर्कल में इनका ये नहीं है कि एम हाँ एजुकेशन होना चाहिए या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, हमारा अपना स्टेटस जो है एजुकेशन से या पढ़े लिखे इससे रिलेट कर, वो सिर्फ मानते हैं कि हाँ भाई पैसा पैसा है, पैसा ही इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, वही मैं आज अपने बच्चों को बता रही थी कि जहाँ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, अभी वो कोई किसी क्रिमिनल की डेथ हुई थी तो उसके बारे में, तो वो क्या पैसा कोई कमा लेता है लेकिन वो इस्तेमाल कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, जो सही तरीके से कमाया गया पैसा है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीकों से जो है वो इस्तेमाल करने से भी डर लगेगा कि हाँ भाई सही से हम दिखा सकते नहीं।
1: राइट राइट,
0: तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं यंगस्टर्स को आज के इसमें।
1: अच्छा, ये सोशल मीडिया वाली जैसे आपने बात की, क्योंकि हम सब देखिए बड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, आई थिंक हर एज ग्रुप सोशल मीडिया पे टाइम दे रहा है, है ना?
0: जी।
1: और सबसे खास बात तो ये कि आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया।
0: जी हाँ,
1: आप देखते रहते हैं, एक रील, दो रील, चलता रहता है, सिलसिला चल रहा है। आपने एक बार कुछ मूवी देखनी शुरू की तो आपको लगता है बस खत्म, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मजा आएगा। सीरीज का जो एक नया दौर चला है वो, हाँ बिल्कुल, अगर 20 सीरीज है और आपने शुरू कर दिया, 20 एपिसोड्स है एक सीरीज में से, तो आप रात भर देखेंगे, जुनून काइंड ऑफ, मतलब हम भी नहीं हट पाते। सच्चाई है कि वीकेंड्स पे हम में से कितने लोग, सीरीज ही हमारा
0: बस वही है, सीरीज है। आज के समय में ये सीरीज और ये जो गेमिंग का एडिक्शन है,
1: यस,
0: ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है।
1: लेकिन पेरेंट्स अब क्योंकि देखिए मैम, अभी क्या है, इसमें हम सब इन्वॉल्व है। मैं खुद सोशल मीडिया देख रही हूँ, बच्चे को कैसे मना करूँ, क्योंकि बच्चा भी बोल देता है आप भी तो देखते हो। तो पेरेंट्स कैसे, एक तो कंट्रोलिंग कैसे सोशल मीडिया की जाए, फिल्ट्रेशन कैसे किया जाए, तो एज ग्रुप वाइज।
0: फिल्ट्रेशन के लिए तो गूगल वगैरह ये सब पे है, आपको सर्विसेज हैं उसमें कि हाँ आप ब्लॉक कर सकते हैं, बट कहीं ब्लॉक कर देने से सिर्फ ये नहीं है जब तक हम अपने आप को ब्लॉक ना करें। मेन है खुद को हमें रोकना है कि हाँ भाई हम जो पर्टिकुलर टाइम 1 से 2 घंटा 3 घंटा इस चीज पे यूज कर रहे हैं, कहीं और भी क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, या अपने आप में, या अपने रिलेशंस को, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में कर सकते हैं।
1: तो व्हाट यू सजेस्ट कि सबसे पहले हम खुद
0: को, अपने आप को सीधा स्टॉप कहें इस पर्टिकुलर चीज, ठीक है, किसी चीज का एक लिमिट होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए। जैसे इवन आई हैव, मुझे भी आदत है मोबाइल पे ये करने की, लेकिन मोबाइल पे मैं बुक्स रीड करती हूँ, उसके सिवा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, चाहे ये जो लोग करते हैं वो नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बार अगर डालना शुरू किया, या एक बार किसी का हमने देखना शुरू किया, तो वो बस लगातार चलता ही जाएगा। नेक्स्ट डे लगता है कि हाँ आज उसने क्या स्टेटस डाला होगा।
1: True.
0: मैंने कई लोगों को देखा है आपस में अच्छे रिलेशंस में लड़ जाते हुए, किस लिए, बस कि हाँ भाई उसके स्टेटस पे ये चीज थी, उसने मेरे बारे में लिखा होगा, ये मेरे बारे में ही होगा। तो ये क्या है, हम एक्चुअली क्या है, हम वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं। हमारा जो परसेप्शन है किसी चीज के बारे में कैसे बिल्ड होता है, वो हमारे खुद से।
1: True, absolutely true.
0: फॉर एग्जाम्पल, अगर 11th 12th के बच्चे दो बात कर रहे हैं, दोनों अलग अपोजिट जेंडर्स की, तो किसी और का नजरिया क्या होगा कि हाँ भाई इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो ये क्यों कुछ चल रहा ही हो सकता है, क्यों वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते? तो ये है कि हाँ हमारे परसेप्शन में, हमारे पास्ट में, हमारे स्टीरियोटाइप्स में एक चीज बैठ गई है कि हाँ भाई दो लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं, मतलब उनका कुछ गलत रिलेशन ही होगा।
1: जजिंग,
0: तो जजिंग है, ये हमारा परसेप्शन है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है।
1: तो बहुत अच्छे से अनामिका मैम आपने एक्सप्लेन किया है ये टॉपिक्स को, बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल देख के हमें समझाया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स को काफी हेल्प मिल रही है ये बातचीत से, स्पेशल रेडियो शो से। यहाँ पे लेकिन विद योर परमिशन एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगी मैं, और ब्रेक के बाद फिर वापस अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी श्योर।
1: सो लिसनर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के वापस मिलते हैं ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ आपकी आरजे शिखा और हमारा रेडियो शो परवरिश और पोषण, जी हाँ वो लेकर के मैं वापस आ गई हूँ। हमारे साथ में इस समय काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं अनामिका कर्ण मैम, जो कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल से यहाँ आई हैं और आज बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए वो खास बातचीत लेकर के आ रही हैं। तो मैम, आपने काफ़ी चीज़ें हमें समझाई, सोशल मीडिया पे बातचीत हो गई, पेरेंट्स के बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल पे बात हुई। अब एक चीज़ अगर हम आते हैं, सी एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे जैसे हमने किसी को रोकना शुरू किया, खास तौर पे बच्चों पे, तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, छुपाना शुरू करता है। एक सिचुएशन है जहाँ बचपन में ही बच्चे ने प्यारी प्यारी झूठ बोले और एज अ पेरेंट हम बड़ा एंजॉय करते हैं, देखो झूठ बोल रहा है, ठीक है, मजा आता है। लेकिन अगर वही कैपिंग नहीं की गई या वही उस चीज को टैकल नहीं किया गया, एक तो वो सिचुएशन पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि बचपन में ही जब पता हो कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उस पे कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, और जब बच्चा टीन एज वाली एज में चला जाए, नहीं हम कंट्रोल कर पाए, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पहले झूठ नहीं बोलते, टीन एज में जाके बहुत सी चीजों के लिए, फ्रेंड सर्कल, बहुत सी ऐसी चीजें होती है आसपास जो इफेक्ट करती है, वो झूठ बोलने लग जाते हैं, तब पेरेंट्स क्या करें? तो ये दो चीजों पे
2: देखिए, जैसे आपने बोला कि बच्चा झूठ बोल रहा है बचपन में ही और हम पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे मजाक बना के चाहे ये करके, तो बच्चा ये फील करता है कि हाँ भाई ये तो एक्सेप्टेड है, मैं बोल रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, यही है बेस वो फॉल्टी लर्निंग जो अभी मैं बोल रही थी उसका, कि हाँ भाई ये गलत लर्निंग कहाँ से हुई, बचपन में, ठीक है मैंने झूठ बोला तो पापा मम्मी को अच्छा लगा, वो हंस रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ से शुरू हो गया ये चीज़। ये लर्निंग आगे जाके टीनेज में कंटिन्यू होगी, यही चीज़। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि टीनेजर्स बचपन से कुछ नहीं झूठ बोला उन्होंने, लेकिन टीनेज में आके कुछ चीजें छुपाने लगे, छुपाने कब लगता है बच्चा? जब उसे डर लगता है कि इसका मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पापा मम्मी को पता चला तो क्या होगा,
1: मतलब कभी उसने कुछ अगर बताया है आपको, पता चला तो आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, जिससे बच्चा डर गया, वो सोल्यूशन बनाता है कि बताएंगे या छुपा लेंगे,
2: जी हाँ, तो वो क्या है, उसके बाद से वो छुपाना शुरू कर देगा कि हाँ अब मैं बता दूं तो क्या होगा। तो हमें एक्चुअली क्या है, टीनेज में वो क्यों अपने दोस्तों से बात कर रहा है या दोस्तों से शेयर कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि वहाँ पे वो बात कर रहा है और वो एक्सेप्टेड है, तो क्यों ना हम बीइंग अ पेरेंट उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और जहाँ गलत है उसे वो चीज़ बताएं कि हाँ बेटा ये गलत है और ये क्यों गलत है, ठीक है मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि हाँ भाई शाम में या अंधेरा होने के बाद तुम बाहर मत जाओ, तो क्या कंडीशन है, क्यों मैं रोक रही हूँ, वो उसको क्लियर पता होना चाहिए। तो क्या है, बच्चा छुपाना, जब क्लियरली उसको पता है, लिमिट्स पता है कि मैं बता दूंगा उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं,
1: राइट तो यानी देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी और एज अ पेरेंट हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है।
2: बीइंग अ टीचर, मुझे जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है इसके अकॉर्डिंग बच्चे मेरे पास आते हैं, बीइंग अ टीचर या एज अ काउंसलर आते हैं, मैम हम आपसे जो बातें शेयर कर पाते हैं हम घर में पापा मम्मी से नहीं कर पाते,
1: एंड इसका रीजन आप फिर कैसे,
2: बस यही है, क्यों? क्योंकि हाँ पापा मम्मी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे ऐसा है, आप समझ जाते हो हमारी बातें, तो आप समझ जाते हो, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ लग रहा है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिल रहा
1: उनको,
2: है
1: हाँ,
2: जी हाँ, तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा हूँ, ठीक है आगे क्या सही है गलत है, जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया तो उसके बाद अगर आप उसको सही गलत क्या है उसमें वेरिएशन समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली समझेगा।
1: जी तो सही बात है, बिना डर के बच्चा, ठीक है गलती हो गई तो वो बताएगा भी, और आप अगर उसको विद रीजन समझाएंगे
2: जी हाँ,
1: तो वो समझेगा
2: जी हाँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में ही मेरा बच्चा आके वो हर एक चीज मुझसे शेयर कर सकता है, पापा से नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी जिसके कारण वो आके हर एक चीज शेयर कर रहा है, चाहे वो कैसी भी बात हो, तो ये क्या है, वो एक्सेप्टेंस उसे मिल रहा है, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, किसी भी
1: right.
2: चाहे वो पेरेंटल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो स्पाउस में हो, हर किसी में ये होना जरूरी है.
1: अच्छा मैम, एक और चीज, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी लेबलिंग की
2: जी.
1: और अभी आपने एक्सेप्टेंस की बात की
2: जी.
1: हमारे यहाँ आसपास अभी भी अगर हम देखें तो जब भी हेल्थ की बात होती है, क्योंकि शो इज ऑल अबाउट परवरिश और पोषण
2: जी, जी.
1: तो अगर हम पोषण, न्यूट्रिशन या हेल्थ की, फिटनेस की बात करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस

0: बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। माँ बाप हमेशा अच्छा खाओ खाओ खाओ, मतलब हमारा एज अ पेरेंट दिन भर होता है कि बच्चा, हम बस, हमको बहुत श्योरिटी हो जाती है अगर उसने दिन भर खाना अच्छा खाया
1: अच्छे से,
0: हमें लगता है ठीक है।
1: लेकिन
0: आज का दिन
1: हाँ, वहीं पे हम देखते नहीं है कि वो फिजिकल फिटनेस के लिए उसको एक्सरसाइज करना, खेलना,
0: वो एक साइकिल कि क्या उसने अगर आज हमारे हिसाब से अच्छे से खाना खाया है तो क्या उसने उसको कैलोरीज बर्न की है। मेरे ख्याल से ये जो एक पूरा फिजिकल साइकिल एक्टिवेट करने का सर्कल है, इसमें अभी भी हम थोड़ा सा लैकअप कर रहे हैं। दूसरा, लेबलिंग की बात हो, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और बच्चों के बात आते ही पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों में कई बार छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, मान लीजिए ऑटिज्म की चैलेंज है या डाउन सिंड्रोम है या कुछ ऐसा जो कि बच्चा चैलेंज्ड है, पेरेंट्स डिनाइल मोड में चले जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि, और दूसरे जो है, जो दूसरे लोग हैं वो बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं।
1: जी,
0: तो ये चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा है विद स्पेशल नीड, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड आज के समय में भी पूरी तरह से नहीं है। अगर हम देखें तो अगर एक बिल्डिंग में कोई बच्चा है जो स्पेशल नीड्स जैसे चाहिए, वो नीचे उतरता है खेलने के लिए, बाकी बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो बच्चा कट कट के ही चाहे वो रहता है। सो वहाँ से, हाँ, वो कौन सा बच्चा, अच्छा वैसा था ना वो वाला बच्चा, क्या हुआ, वहाँ से शुरू हुआ। पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं, सिंपल सी बात है, कोई सीरियस बीमारी भी किसी को होती है तो वो जल्दी पहले एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होता, डिनायल में ही होता है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके और डिले कर देते हैं कि हाँ भाई, जब पता चलता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो इंटरवेंशंस उस हिसाब से शुरू हो जाए। थेरेपीज जो है वो 3 ईयर्स के पहले अगर शुरू हो जाती हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, लकड़ी पुरानी, बांस पुराना हो गया तो उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, बस वैसा ही होता है कि हाँ भाई, ये अगर पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें डिले हो गया आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्टेंस इसी स्टेज में,
0: तो आगे जाके स्लो हो जाती है, फिर ट्रीटमेंट
1: स्लो, और फिर कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है इस चीज,
0: क्योंकि वो अर्ली एज में ही वो चीज डायग्नोज हो जाए, ट्रीट हो जाए तो बेटर है।
1: जी,
0: तो मैम, एज अ लाइक एज अ पेरेंट और एज अ सिटीजन, आप लोगों को जो हमें सुन रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, जब इस तरह से, जैसे आपने बात किया पार्क में खेलने गए और भी सोसाइटी के बच्चे आए हैं, तो देखिए बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं उसके साथ नहीं खेलना है, लेकिन अगर वहीं पे और भी पेरेंट्स खड़े हैं, वो कैसे अपने बच्चों को समझाएं कि आपको खेलना है उसके साथ,
1: ये कैसे, मतलब सेंसिटिविटी बनाने की जरूरत है हमें सोसाइटी में कि हाँ भाई, वो भी तो एक बच्चा ही है, जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट हमें जो करना है वो हम, ये मैंने देखा है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी वहाँ पे मना कर देते हैं कि हाँ भाई नहीं, उसके साथ मत खेलो, तो ये चीज गलत है।
0: मतलब हमें एक्सेप्टेंस एक तो लानी है,
1: सेंसिटिविटी जरूरी है इन चीजों के,
0: इंक्लूसिव होकर के चलना है, कि इंक्लूड एवरीबॉडी।
1: जी हाँ,
0: सो मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड काफी चीजें आज टेकअवेज रहे, बी इट बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, करना भी है एज अ पेरेंट बहुत सी चीजों पर, लेकिन कैसे करना है वो आपने समझाया। देन आपने बहुत अच्छे से जो एक चीज हमें बताई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, रिएक्ट कितना करना है, कैसे करना है, कैसे उसे मोल्ड करना है। एंड टू ऑल द लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि रिएक्ट तुरंत मत करिए, बच्चे को अगर कुछ समझा रहे हैं तो विद अ रीजन समझाइए, अगर आप बोल रहे हैं कि बेटा उस तरफ नहीं जाना
1: है, एक्सेप्टेंस मोड में लाने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस मोड में अगर वो बच्चा आएगा तभी आपके कुछ भी
0: बातें सुन
1: बातें हैं तो वो सुनेगा समझेगा। जी,
0: तो हमेशा रीजन और लॉजिक के साथ उसे समझाएं, ये नहीं हो कि आपने उसको बोल दिया कि भाई उधर नहीं जाना है, अब उसका मन तो चाहेगा ना कि उधर क्यों नहीं जाना है, अच्छा नहीं जाना है एक चीज, क्यों नहीं जाना,
1: नहीं जाना है वो जानना,
0: तो उसको जरूर बताएं कि उधर नहीं जाना है क्योंकि मे बी उधर प्रॉब्लम है, पानी भरा है, गड्ढा है, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, तो आप इन चीजों के साथ में उसे रोकें, ये नहीं कि सिर्फ आधा आपने बात बोल दिया और आप अपना जजमेंट देके निकल गए। सो ये थी आज की हमारी टेक अवेज, एंड मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप यहाँ से आए, जेपी इंटरनेशनल स्कूल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ कोलैब किया और इस रेडियो शो में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया.
1: थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा.
0: थैंक यू. और इसी तरह से हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे और पेरेंटिंग की जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब लेकर के मैं शिखा यही मिलूंगी ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM. स्टे ट्यून्ड.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लावेटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.

0: mixing in the house. Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
0: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़

0: जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से

0: बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
0: Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. Saw Shart Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप media में career बनाना चाहते हैं तो join कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये course offer करता है Bachelor's and Master's degree in Journalism and Mass Communication, specially designed for film, television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Doctor?

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम। हे बाबू, आप

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगरे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या क्या हुआ बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है। इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-1166-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।